बड़ा अरे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले हम चिंगार नो वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेख बाके मुग अब्बा पाप देम बनो के अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामों ने अस्त अल्लाह।